तुम शरणागत तुम गढ़ पुरख बडोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर बेचोली जन नानक अन दिन हर गुण गावे मिल सतगुर गुर बेचोली।

प्राण प्यारो मने आधारो की चित्तों जैसे पान तंबोली की चित्तों जैसे

सुहावन है एह गुरु की मोहर सुहावन। जब पहले सब श्रेष्ठ उपाई तब ही मानुख देह बनाई, तन इसके सिर केस जो दीनो सो ए तन शिंगारे कीनो। दाड़ा मूछ सिर के

नर से नर हुए अवतरे हैं। शिव शिव करते जो नर ध्यावे, बर्द चढ़े डौरू टमकावे, भजे देव कोई और महामाई की पूजा करे। नर से नर हुए अवतरे, तू कैयत ही आद पानी मुक्त की बरिया।

सतसंग जाए कर चित डुलावे, हर जस सुनते बात चुलावे, निरतन देख ना पास बहावे, सोतन खाई मूल कहावे, कथा कीर्तन में मन नहलावे, संत

उनकी सेवा करे बिसेख मधुर बचन साहेब को भाख चाकर सिंगन को ही राख चाकर सिंगन को

रहतिये जग दरसावत, पहुल पिए को कर्म कमावत। जे को रहतिये जग दरसावत, पहुल पिए को कर्म कमावत। तिन स्यों वर्तन नाहे मिलावे, तिन स्यों वर्तन नाहे मिलावे। जे को रहतिये जग दरसावत, पहुल पिए

दुख होए ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा धन गुरमती पाए, काचा धन फुन आवै जाए। रहाओ मनमुख भूले सब मरे गवार, भव जल डूबे ना उरवार ना पार, सतगुर भेटे

चरण गहो बको शुभ रसना दीजे प्राण अकूर रहाओ मन तन निर्मल करत क्यारू हर सिंचे सुधा संजोर आरस में मगन होत कृपाते महा विख्याते तोर आयो सरन दीन दुख भंजन चतब तुमरी ओर अपै पद दान सिमर स्वामी को प्रभ नानक बंधन छोर। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। दर्शन देख जिमा गुर तेरा पूर्ण कर्म होए प्रभ मेरा यह बनंती सुन प्रभ मेरे देहो नाम करे अपने चेरे अपनी सारण राख प्रभ दाते गुर प्रसाद कहने बिरले जाते सुनो बिनो प्रभ मेरे मीता चरण कमल बस है मेरे चीता नानक एक करे अरदास बिसर नाही पूरन।

तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। सब कुछ साचा साचा है सोए, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोए, सच साचा सच आप दड़ाए, नानक आपे वेखे आपे सच लाए। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धनासरी महला तीजा, काचा तन सांचे मूर्ख अगवार, मनमुख भूले अंध गवार, बिखिया कह तन सदा दुख होए, ना साथ जाए ना प्राप्त होए, साचा धन गुरमति पाए, काचा धन फुन आवे जाए। वाहिगुरु जी का खालसा की फतेह। जपो सतनाम।

रवे आराम हृदय परम कत पाई जा गुरु शरणाई आए लोभ विकार नाव डुबदी निकली जा सतगुरु नाम दृढ़ाए जी दानपू गुरु पूरे दिया राम नाम चितलाए आप कृपाल कृपा करे देवे नानक गुरु शरणाए बाणी राम नाम सुने सिद्ध कार्य सब सुहाए राम रोम रोम रोम रोमे मैं गुरमुख ना राम ते आए राम नाम ते आए पवित हो आए तिस रूप नरेख्या काई रामो राम रव्या कट अंतर सब तृष्णा भूख गवाए मन तन शीतल सिंगार सब हुआ गुरमत राम परगास नानक राव अनुग्रह किया हम दासन दासन दासा

हर हर काम जिय, हरि उत्तम काम जपिए, हर नाम हर जपिए अस्थिर होवे, हो हर जपिए अस्थिर होवे, जन्म मरण दोए दुख मिटे, सहजे सुख सोवे। हर हर कृपा तारु ठाकुर, हर जपिए आत्म राम जियो, हर हर करता दुख विनाशन, पतत पावन हर नाम जियो। हर नाम पदार्थ कालज गौतम, हर जपिए सदगुरु भाई जियो। गुरमुख हर पढ़िए, गुरमुख हर सुनिए, हर जपत सुन दुख जाय जियो।

चौथा सातयुग सब संतोख शरीर पगचारे तरम त्याण जियो मन तन हर दर गए परम सुख पावे मन तन हर

प्रहलादराय अहंकारिया निंदका पिठ दे नाम दे मुख लाया जन नानक ऐसा हर सेविया अंत ले छुड़ाया अहं

0: जय मात पिता सुत मीत न पाई
1: मनोहा नाम तेरे संसाई
0: जय महा प्यान दूत जम दले
1: केवल नाम संग तेरे
0: जय मुश्किल हो वे अत पारी
1: हर को नाम के माए धरे
0: अनक पुने चरण करत नहीं तरे
1: हर को नाम कोट पापर हरे
0: गुरमुख नाम जपो मन मेरे
1: नानक प्रभु सुख के नेरे
0: सगल श्रेष्ठ को राजा दुखिया
1: हर का नाम जपत होए सुखिया
0: लाख करोरी बंध न परे
1: हर का नाम जपत निस्तारे
0: अनक माया रंग देख न बुझावे
1: हर का नाम जपते अकावे
0: जे मार्ग ए जात अकेला
1: ते हर नाम संग होत सेला
0: ऐसा नाम मन सदा त्याई है
1: नानक गुरमुख परंगत पाईए
0: छूटत नहीं कोट लख बाई
1: नाम जपते पार कराहे
0: अनक बिगंजे आए संगारे
1: हर का नाम तत्काल वधारे
0: अनक जान जन में मर जाम
1: नाम जपत पावे विश्राम
0: हो मैला मल कभू न धोवे
1: हर का नाम कोट पाप खोवे
0: ऐसा नाम जपहु मन रंग
1: नानक पाईए साध के संग
0: जे मार के गन जाए न कोसा
1: हर का नाम हुआ संग तो
0: जे पेंडे मा अंध गुवारा
1: हर का नाम संग जेरा
0: जहां पंतर को न सियानु
1: हर का नाम ते नाल पिछानु
0: जय महा प्यान तप्त बो काम
1: ते हर के नाम की तुम ऊपर शाम
0: जहां त्रिखा मन तो जया कर खे
1: ते नानक हर हर अमृत भर खे
0: भाग जना की बर्तन नाम
1: संत जना के मन विश्राम
0: हर का नाम दास की ओट
1: हर के नाम उदरे जन कोट
0: हर जस करत संत दिन रात
1: हर खोते साधक मात
0: हर

0: अनप जम का पौ व्याप
1: अनप जतन कर श्रीष ना तरा
0: पेख नेक अगन बुज
1: ओठ पाद रहे ने सिजे
0: छूट स नाही ओ पयाल
1: होय व्यापे माया जा
0: अवर कर तू सगली जम डाने
1: ओन पंजमे तेल नहीं माने
0: हर का नाम जप दुख जाए
1: नानक बोले सर।

0: बल जस
1: सगल पुरख में पुरख प्रधान
0: सा संग जाका मिटे अपमान
1: आपस को जो जाने नीचा
0: सो कनिये सबसे ऊंचा
1: जाका मन होए सगल किरीना
0: हर हर नाम जन कर चीना।

0: पावे धर गय मान
1: सिर सारे
0: सदा सदा भूलन हार
1: नानक रखन हार अपार
0: रतन त्या कौडी संग रचे
1: साथ जोड़ जोड़ समझे
0: जो छड़ना सो अस्थिर कर मान
1: जो होवन सो दूर प्रण
0: छोड़ जाए तिसका श्रम करे
1: संग सहाय तिस पर हरे
0: चंदन लेप उतारे तोए
1: गर्द प्रेत पसम संग होए
0: अंध कूप में पत बिकराल
1: नानक काल लियो प्रभु दयाल
0: करतूत पशु की मानस जात
1: लोग पचारा करे दिन रात
0: बाहर पे अंतर मल माया बाहर ज्ञान ध्यान स्नान
1: अंतर भी आपे लोग स्वाहा
0: अंतर अगन बाहर तन स्वाहा
1: कल पाथर कैसे

0: जय प्रसाद हस्त कर चल है,
1: जय प्रसाद पूर्ण भरे,
0: जय प्रसाद परम गत पाप है,
1: जय प्रसाद सुख सहज समावे,
0: ऐसा प्रभु त्याग अवर कत लागो,
1: गुरु प्रसाद नानक मन जागो,
0: जय प्रसाद तू प्रकट संसार,
1: जिस प्रभु को मूल ना मनो बिसारे,
0: जय प्रसाद तेरा प्रताप,
1: रे मन मूर्त तो ताप हो जाप।

साध के संग ना कबहू तावे, साध संग बस्त अगोचर लह, साध के संग बसे थान ऊंचे, साध के संग दृढ़े सब धर्म, साध के संग पाए नाम निदान, साध के संग सब कुल उधार, साधु के संग सो तन पावे, साध संग धर्म राय करे सेवा, साधु के संग पाप लायन, साध के संग सर्व थान गम, साध के संग नहीं किश काल, साध

0: संग ना मिर्था जावे।
1: साध संग प्रार ब्रह्म साध रिद बसे,
0: नानक दरे सासन रसे।
1: साध के संग सुनो हर नाम,
0: साध संग हर के गुण गा।
1: साध के संग ना मन ते बिसरे,
0: साध संग सत परिसरे।
1: साध के संग लगे ब्रह्म मीठा,
0: साधु के संग गठ रीठा।
1: साध संग पे आज्ञाकारी,
0: साध संगत पई हमारी।
1: साध के संग मिटे सब रोग,
0: नानक साध पे टे संजोग।
1: साध की महिमा वेद न जाने,
0: जेता सुने तेता बखियाने।
1: साध की उपमा ते गुण ते दूर,
0: साध के उपमा रही भरपूर।
1: साध की शोभा का नाही अंत,
0: साध के शोभा सदा बेअंत।
1: साध की शोभा ऊंच ते ऊंची,
0: साध की शोभा ऊंच ते

0: तद जागत
1: ब्रह्म ज्ञानी अमृत
0: ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद
1: ब्रह्म ज्ञानी के कर सदानंद
0: ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बनास
0: ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता
1: ब्रह्म ज्ञानी एक संहिता
0: ब्रह्म ज्ञानी के होए अचिंत
1: ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल मंत्र
0: ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रव्याप
1: ब्रह्म ज्ञानी का बट प्रताप
0: ब्रह्म ज्ञानी का दस बट भागी पाइये
1: ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइए
0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर
0: ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही
1: ब्रह्म ज्ञानी के सगल मन माहे
0: ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद
1: ब्रह्म ज्ञानी को सदा देश
0: ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाय अदाख
1: ब्रह्म ज्ञानी सार का ठाकर
0: ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाने
1: ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने
0: ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार
1: नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार
0: ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का कर्ता
1: ब्रह्म ज्ञानी सजीवनी मर्ता
0: ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुगत जी का दाता
1: ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष प्रदाता
0: ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ
1: ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर

0: अंतराज अभिमान
1: सो नरक पाती होवत सुहान
0: जो जाने मैं जो बनवंत
1: सो होवत मिष्टा का जंत
0: आपस को कन बंत कहावे
1: जन्म रेबो जुन परमावे
0: तन भूमिका जो करे गुमान
1: सो मूर्खंदा ज्ञान
0: कर कृपा जिसके हृदय गरीबी बसावे
1: नानक यहाँ मुक्त आगे सुख पावे
0: धनवंता होए कर गरवावे
1: ऋण समान का संग न जावे
0: बहु लश्कर मानुक ऊपर करे आस
1: पर पितर ताका होए बना
0: सब ते आप जाने बलवंत
1: किन में होए जाए पसमांत
0: किसे न बदे आप अहंकारी
1: धर्म राय तिस करे खुआरी
0: गुर प्रसाद जाका मिटे अभिमान
1: सो जन नानक दर के परवान
0: कोट कर्म करे हो तारे
1: श्रम पावे सगले बिरथारे
0: अनक तपस्या करे अहंकार
1: नरक स्वर्ग फिर अवतार
0: अनक जतन कर आत्म नहीं द्रवे
1: अदरक एको कैसे गवे
0: आपस को जो भला कहावे
1: जिसे भलाई निकने आवे
0: सार की रे जा का मन होए
1: और नानक ताकी निर्मल सोए
0: जब लग जाने मुझते किस होए
1: तब इस कोसुके नाही होए
0: जब ए जाने मैं किस करता
1: तब लग गर्भ जोन में फिरता
0: जब तारे को बैरी मीत
1: तब लग नेचर नाही जीत
0: जब लग मोह मगन संग माए
1: तब लग धर्म राय देश जाए
0: प्रभु कृपा ते बंधन टूटे
1: गुरु प्रसाद नानक हो छूटे
0: सहस खटेला कोट तावे
1: कृतना आवे माया पाछे पावे
0: अनक भोग भिख्या के करे
1: ना तृप्त आवे खपखा मरे
0: बिना संतोख ते ही को राजे
1: सुर मनोरथ व्यर्थे सब काजे
0: नाम रंग सर्व सुख होए
1: भटकागे किसे प्राप्त होए
0: कर्ण करावण आपे आप
1: सदा सदा नानक हर जाप
0: कर्ण करावण करने हार
1: इसके हाथ कहाँ विचार
0: जैसी दृष्ट करे तैसा

0: आप उपदेश समझे आप
1: रचिया सबके साथ
0: आप कीनो अपन विस्तार उसते भिन्न कहो किश होए अपने चलता करने हार
1: करे रंगे अपार
0: मन में आप मन अपने माहे
1: कीमत कहना जाए
0: सत सत सत प्रभ स्वामी सच सच सच सब कीना भला भला भला तेरा रूप
1: सुंदर
0: निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी।

0: रहे अकाए
1: मोहनत इचना लागे आए
0: मारे राखे एको आप
1: मान के कुछ नहीं हाथ है
0: जिसका हुकुम वो सुख होए
1: जिसका नाम रखंत पर होए
0: सिमर सिमर सिम प्रभ सोए
1: नान के बिघ्न लागे कोए
0: उस्तद मन में का निरंकार
1: मेरे सत्य विहार
0: निर्मल रसना अमृत पियो
1: सदा से ला कर ले जियो
0: नैनो पेखटा कुरु का रंग चरण चलो मारो गोविंद कर हर कर्म सर हर कथा बड़पागी तेजन जग माहे राम नाम जो करे विचार मंतन मुख बोले हर मुखी एको एक एक पछाने नाम सां जिसका मन मान्या गुर प्रसाद अपन आप सुजे सा संग हर जस कहत आंदन कीर्तन के बल बख्यान एक उपजी जान की आसा पार ब्रह्म की जिस मन भूख जिसको हर मन चित्यावे जिस प्रभु अपना कृपा करे जैसा सात सा दृष्ट आया
1: अपने कार्य में आप समाया
0: शोधित शोधित शोधित सीजिया जब देखो तब सब किश मूल नह किश जन्मे नह किश मरे
1: आप ही करे
0: आवन जावन आवन जावन दृष्टान दृष्ट आपे आप सगल में है आप अब नासी नाहे किश खंड अलाख पे पुरख प्रताप जिन प्रव जाता सो शोभावंत प्रभ के सेवक सलो उदारण आपे मेल कृपाल उनकी सेवा सोई लागे नाम जपत पावे विश्राम
1: उत्तम
0: जो किश करे सो प्रभ के रंग
1: सह
0: सुपाए होवे सो होए
1: हर पिछाने
0: प्रभ का किया जन मीठ लगाना जिसते उपजित समाहे समाये।

0: प्रेम रस रंग
1: परे
0: साना सब त्याग बड़पागी जपिया प्रसोए सेव की मनसा पूरी पई जंको प्रभ होयो दयाल बंधन काट मुख जान पिया इश्पुनी सादा सा पूरी जिसका साथ इन लिया मिलाए सो क्यों विषय जे का ना पाने।

जब आकार स्नान दृष्टता जब तारी अपन सुन समाद जब इसका वर्ण चेहना जापत जब अपन आप पार ब्रह्म अपन खेलिया भरतीजा जब होवत प्रभ केवल तनी जब एक हर अगम अपार जब निर्गुण प्रस है सुपाहे जब आपे अपनी जो तरह अपन चलता आप का निहार अविनाशी सुखे अपन आसन जब पूर्ण करता प्रभ सोए जब अवगत अगोचर प्रवेका जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे अपन आप ही अचर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता जय निरंजन निरंकार निर्वाण जय स्वरूप चिंगे केवल जगदीश जय जो स्वरूपी जो संग समाव है कर्ण करावन का निहार जब अपनी शोभा अपन संग बनाई जय सर्व कला पेपर बीन जब अपन आप उतार है जय अपन ऊंच अपने अपनेरा विस्मन विस्मर है विस्माद जय अशर शेद भेद समाया आपस को आपे आदेश जय एक एक एक भगवंता जय अपन आप पतियारा बहु ब्यंत ऊंचते ऊंचा जय आपर चोपर पंच आकार पाप पुनत पही कावत।

आप कथे आप सुन निहार जात पापता शिष्ट उपाए तुमते पहने ही किश कोहे जाको प्रभजी आप जाए सो समासी तत का बेटा जी जंत सब ताके हाथ जिस राखे तिस कोई न मारे तिस जबर कहा को जा।

उत्तम श्लोक साध के बचन सुनत कमावत हो तो उदार सफल जीवन सफलता का संग जय जय शब्द नाद बाजे प्रत्युग पाल महांत के माथे सान जो संसार नहीं आए मिट गए बैर पे सबरेन सो प्रसन्न पे गुरुदेव आल जंजाल बिकारते रहते कार प्रसाद आप प्राप्त अतारी प्रभु की उस्तुत करो संत मीत सुख मनी सहज गोविंद गो नाम सर्व इच्छा ताकि पूर्ण होए सबते ऊच पाया स्थान हाथान खाट चले जन सोए खेम सांत जनम निद विद्या तप जो प्रवत्यान चार पदार्थ कमल प्रगास सुंदर चतुर्ता का बेता।

0: वस्त्र छीनत द्रौपदी रखी लाज जिन जिन सेवे अंतवार रे मन सेव तू त्रिलोचन गुरमिल पही सद सिद बेणी को कुर कियो प्रगास रे मन तू
1: भी हो है दास
0: जय देव त्याग्यो अहमे नाई उधरे।

रख ले हो हम ते बिगरी शील तरम जप भगत न कीनी हाँ अपमान तेज पगरी अमर जान संची एकाया।

प्राण पत मिलो मेरी माई, रूप गीन बुध बल गिनी, मोह पर देश दूर ते आई, खोजत खोजत पही नाहिन दर्ब न जोबन माती, मोहे अनाथ की करो समाई, मोहे अनाथ की करो समाई। तन श्री हर कृष्ण साहिब जी, खोजत खोजत पही बैरागन, प्रभ दर्शन को हों फिरत

0: मुख हर आराधे मेरा राम।
1: हर आराधे जम पंथ सादे दुख ना व्यापै कोई, जल थल मैल पूर्ण स्वामी जत देखा।

जब इन एको एक की बुझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया तब ते इसनो सब किछ सूझिया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की कीमत परी

जब इन किछ कर्म ने पेदा तब ते दुख दंड अरखेदा जब इन एको एकी बुझया तब ते इसनो सब किछ सूझया तब ते इसनो सब किछ सूझया।

कर कृपा जो सतगुर मिलियो मन मंदर में दीपक जलियो जीत हार की सोजी करी तो इस घर की घर मानस जन्म अमोल है तो इस घर की

समर्थ गुरु सिर हाथ करियो, गुर कीनी कृपा हर नाम दियो, जिस देख चरण अघन हरियो, निस्बासर एक समान त्या, सो नाम सुने सुत पान, पंदा सुवास जगतर गुरु की, पारस पेट पर्स करियो, रामदास गुरु हर सत कियो, सम्राट गुरु

माया मद मोहित अमृत नाम दियो समरथ फुन कीर्तवंत सदा सुख संपत रिद अर सिद्ध ना छोड़े साथ दान बड़ो अतवंत महाबल सेवक दास कहो एव तथ ताहे कहा परवाह काहू की जाके बसीस तरयो और हा

संतन के पाछे मेरी सेजड़ी है आडंबर बनिया मन आनंद पाया प्रभ आवत सुनिया। धन गुरु अर्जुन देव।

कारीगर कारीगरा कारखाने विच जाए मिलंदे अपने अपने वर्ण विच चार वर्ण कुल धर्म तरंदे अपने अपने साहिब चाकर जाए जुहार जुड़ंदे अपने अपने खेत विच बियो सदा किरसान विजंदे साध संगत गुरसिख पूजंदे साध संगत गुरसिख पूजंदे अमली रचन अमलियां।

इन संगती सब ऐसे रहे जैसे पस ढोर, जिनकी तत से ना जाननी बिन नावे सब चोर, बिन भागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल भरी जय जियो, वड भागी हर संगत पावे भागहीन भ्रम चोटा खावे, बिन भागा सतसंग ना लबे बिन संगत मैल भरी जय जियो। बिन संगती सब ऐसे रहें

दर्शन भेट तहत आनंदा, दुख गया हर गाया, हर रस पीवो भाई, हर रस पीवो भाई, नाम जपो नाम।

मिल सत संगत खोज दसाई, मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर प्रभ वसै जियो। मिल सत संगत खोज दसाई, विच संगत हर

वेदन गुर बिरहों लगावे, मैं बिन गुर देखे नींद न आवे। मेरे मन तन वेदन गुर बिरहों लगावे, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो। जन नानक गुर मिल रहस्य जियो, हर हर दया करो गुर मेलो, हर हर दया करो गुर मेलो। जन नानक गुर मिल।